दोस्तों मैं कुलदीप माणक ते मेरा बेटा जुतवीर माणक असी दोनों ने अमन है दिखाता एक गाना गाया एक गीत चढ़ा है एक गीत

कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है अल्लाह।

कुछ मुस्कुरा के सा किया, चूम के कुछ संग के कुछ मुस्कुरा के सा किया, इनकार कर दे पर जरा नजरा मिला के सा किया, अपने में खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, अपने में खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, ते फिर मेरी याद जो भूल जा फड़ा

ते नरक है महफिल तेरी जिथे दिन अंधेर है ते चंद की चाड़ेगा तू जन्नत ते जाके साकिया ते अज ना किस सर्व जीवन।

कार, सतनाम, कर्तापुरक, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरप्रसाद, इसनों मूल मंत्र क्या जाना है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस अनंत परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन इस मूल मंत्र विच दे दिता है। इस दे अखरी अर्थां नूं समझिए। एक परमेश्वर एक है, दो जां तीन नहीं। ओंकार रजो तमो सतो गुण तो परे परमेश्वर सर्वव्यापक है। सत नाम उसका नाम सच है। कर्ता पुरख इस सगल जगत का कर्ता परता वो प्रभु आप ही है। निरपाओ परमेश्वर आप ही जदों लीला रच रहा है आप ही ओ जीव जगत हो गया। जद उस तो अलावा होर कोई है ही नहीं ता फिर उसनु डर किसता। निर्वैर आप तो आपनु वैर भी संभव नहीं सो प्रभु निर्वैर है। अकाल मूरत परमेश्वर काल समय तो बाहर है। काल विच जन्मी हर मूरत मरणशील है। परमात्मा दा रूप अकाल है समय तो बाहर है। अजोनी प्रभु किसी भी जोनी विच कदी भी नहीं आवेगा। जिसका जन्म कदी ना होवेगा ऐसे परमेश्वर नु अजोनी क्या जाता है। सैभं परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। गुर परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। प्रसाद प्रसाद तो भाव है आनंद रूप। जिसने भी ज्ञान रूपी गुरु दे जरिए उस परमेश्वर नु जानिया वो आनंदित हो जाएगा। मूल मंत्र विच साधक वास्ते साधना दा राह भी है, सुझाव भी है और अंतम रूहानियत दी मंजिल विच जाके जो अनुभूति होवेगी वो भी इसी मंत्र विच है। इसी कारण इसनु मूल मंत्र क्या जाता है। भावना एकाग्रता अते श्रद्धा नाल इस मूल मंत्र दा कीता गया जप साधक दे जीवन च शक्ति ते भक्ति नू लेके आवेगा।

हबीब हक जो करम के मोती लुटा रहा है वो मुस्तफ़ा है, जो बारिश सन में मुजस्सम दुआ बना है वो मुस्तफ़ा है।

0: कफ़न ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है, जो कि 103.2 FM और 100.6 FM पर वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है, और DAB पे ब्रेडफोर्ड, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन, मिल्टन कीन्स, और बहुत जल्द डाबी में भी आप सुन पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे भी सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। वेबसाइट होगी www.sunriseradio.fm पर आप कहीं भी हैं सनराइज रेडियो को सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज़ पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलते हैं दोस्तों, प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशियात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: अभी आप अलका याग्निक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में दोस्तों प्यारा सा गीत सुन रहे थे। यूं तो ये गीत पाकिस्तानी है, मसूद राणा का गाया हुआ है, लेकिन क्या है कि यहाँ अलका याग्निक और कुमार सानू ने गाया, अच्छा गाया। और दोस्तों इसके साथ ही वक्त कहता है कि टाइम चेक होना चाहिए।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियाँ बता रही हैं 11:14, यानी कि 11:14। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त संडा रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और आपके नाम गीत होगा, आपकी जन्म से आपके दोस्तों के नाम होगा। आज दोस्त जो काम पे होते हैं, फैक्ट्रियों में होते हैं, मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं, आज मेरे ख्याल में नहीं होंगे क्योंकि आज बैंक हॉलिडे है और सब छुट्टियां मना रहे होंगे, लेकिन हमें यार प्रोग्राम करना ही पड़ता है, क्या करें। हमारे लिए तो कोई बैंक हॉलिडे ये नहीं है क्योंकि हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने काम पे हैं जनाब, ये कभी भी कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रोग्राम जो अपने टाइम पे है। अगर मेरे प्रोग्राम हफ्ते में जनाब 5 संडे से लेकर जुमेरात तक, यानी कि फ्रॉम संडे टू टिल थर्सडे, तो इसके दौरान कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि हमें प्रोग्राम करना पड़ता है जनाब। तो आज दिल तो नहीं चाह रहा था, दिल कर रहा था घर नहीं बैठे, आज बैंक हॉलीडे अब बनाएं, लेकिन कैसे बनाएं जनाब। आप दोस्तों का प्यार खींच लाता है, लेकिन ये पता था आज कम ही दोस्त सुनते होंगे क्योंकि जो फैक्ट्रियों वाले दोस्त सुनते हैं मेरा रेगुलर प्रोग्राम, वो आज सारे जनाब छुट्टी पे होंगे, स्पेशली गुलाम भाई और उनका पूरा स्टाफ भी आज छुट्टी पे होगा जनाब, मज़े कर रहे हैं सभी जनाब। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। क्या गीत था यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जाने भी। प्यारा सा गीत है, आप सभी दोस्तों के नाम करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी एंजॉय करेंगे। अगर दोस्तों प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और इसे इंजॉय करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने कमर सानू की मत भरी आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद छोटी सी एवेंट्स डायरी सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत था, प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया। और सोनिया बहन बर्मिंघम से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। प्रोग्राम में शमूलियत का आने वाला गीत सोनिया बहन आपके नाम करेंगे। और उसके बाद अब्दुल कय्यूम साहब राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आपके नाम ये गीत, आपने कहा कि आप तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज करते हैं, तो जनाब एक अच्छा सा गीत, तो आपके दोस्तों के नाम ये गीत। और उसके बाद ख्वाजा सरफराज साहब, माजर चाहता हूँ आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि अब्दुल कय्यूम साहब से बातें कर रहा था और आपकी कॉल थी, और जब उन्होंने कॉल रखी तो आपने भी रख दी, आपसे बात नहीं हो पाई। तो जनाब आपके नाम भी ये गीत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं जनाब इस गीत की जानिब, और साइमा जी ये गीत आपके नाम भी करता हूँ, तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:44, यानी कि 44 minutes past 11, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। इला खान साहब, फ़ोन करने का शुक्रिया जनाब। कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपके नाम होगा, और ख्वाजा सरफराज साहब, सोनिया बहन, अब्दुल कयूम साहब राइजिंग हॉल से, और वाजिद भाई हडर्सफील्ड से, और जनाब हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मनीष साहब चक्की वाले, उनके नाम, और चौधरी मुजफ्फर साहब, सफीउल्लाह भाई और ग़ुलाम भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम ये गीत करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा आप प्यारे दोस्तों के लिए, और तारिक जुल्फी साहब आपके नाम भी करेंगे जनाब। तो जनाब हीरा साहब, आपका नाम लिया जनाब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया, और फिर आपने मिस कॉल दी कि आप जनाब बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो ठीक है जनाब, आपके नाम करेंगे। और आपके साथ साथ जनाब जितने भी दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं, सबके नाम करेंगे। प्यारा सा गीत होगा आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। अमूमन ये गीत मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता रहता हूँ, बड़ा प्यारा गीत है। और मुना जी ये गीत आपके नाम भी करेंगे, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना लता जी और मुकेश की आवाजों में। तो जनाब, अब हमें जनाब जमान भाई, जमान खान साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का। आपने कहा कि आप कभी कभी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो जनाब, मैंने गाना और पिक किया हुआ था, लेकिन आपने जब बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से हमें कहा आपने ये गाना सुनना है, तो जनाब फिर मैं अरादा बदल दिया और आपके नाम करता हूँ आपकी पसंद का गीत। और लियाकत भाई, शुक्रिया फ़ोन करने का, आप के नाम भी करता हूँ, हीरा खान साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करता हूँ। चलिए, गाने के साथ साथ आपको जनाब अमिताभ बच्चन के बोल भी सुना देता हूँ।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सरना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं और अब जनाब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। मोहम्मद अकरम साहब, आपने गीत की फरमाइश की जनाब रफ़ी साहब के गीत की और हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आपके लिए पेश करता हूँ। शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत का और अपनी पसंद का गीत सुनने का। तो और जरीना सबा, आपने भी फ़ोन कर रखा है, आपके लिए भी ज़रूर गीत लगाएंगे। थोड़ी देर आप इंतज़ार कीजिएगा और मेरी जानिब से ये गीत मोहम्मद अकरम साहब की पसंद पे मैं सभी अपने तमाम दोस्तों की, तमाम सुनने वालों की नज़र करूँगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो जनाब आपके नाम ये किया गीत इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इंजॉय करेंगे। बड़ा पाए का गीत है, सभी इस गीत को आप सुनते हैं, कितनी दफा सुना होगा आपने, काउंट भी नहीं कर सकते होंगे, लेकिन जब भी सुनते हैं अच्छा लगता है। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर की शक्ल में ये रफ़ी साहब की आवाज़ में प्यारा सा गीत।
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं आए दिल टूटा किसी का जब बहुत डाडा टूटा जनाब मैं तो बचपन में बचपन की बातें याद आ जाती हैं कि बचपन में दिल टूटता था जब कुछ होता था दोस्तों में स्पेशली जब हम कटी हुई पतंग के पीछे भागते थे और हम कटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश में थक जाते थे तब लड़ाई होती थी तो कुट्टी करके फिर से दोस्ती हो जाती थी अब तो खामोशी ऐसी आती है कि सालू बीत जाते हैं और बात नहीं होती वो गली के खेल वो छोटी छोटी खुशियाँ अब सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन में कैद होकर रह गया है जनाब और हम कितने अमीर थे ना उस बचपन में जहाँ गम सिर्फ एक टूटे हुए खिलौने का होता था तो आज तो दिल को ही खिलौना बना के जनाब क्या है कि उसे उसे खेला जाता है तो बार दफ़ा चलिए छोड़िए इन बातों में क्या रखा है जनाब टाइम चेक करते हैं
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: दोस्तों टाइम हुआ है 12:13 यानी कि 12:13 और इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब और कमर्शियल के बाद आप थोड़ा माहौल को बदलते हैं जनाब मस्ती भरा गीत होगा और जरीना साहब आपके नाम होगा और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम करेंगे शाहीन भैना आपके नाम करेंगे लियाकत भाई आपके नाम करेंगे और तनवीर अख्तर साहब आपने भी फ़ोन कर रखा है जनाब काफ़ी देर से आपके नाम भी करेंगे हीरा साहब शुक्रिया दो बार आपने फ़ोन किया आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल के बाद गीत सुनते हैं मस्ती भरा और भानो जी आप भी फ़ोन कर रही हैं आपके नाम भी करेंगे

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा मस्ती भरा गीत सुना, और बनो बहन जी आपने फोन किया और आपने जनाब आपके जब आप फोन कर रही थी तो ये गाना मैं प्ले करने वाला था, इसके साथ आपका नाम जोड़ दिया। आपने कहा था मौसम के लिहाज से गाना अच्छा लगा देना, तो बाद में देखता हूँ जनाब जरूर लगा दूंगा कोई, लेकिन फिलहाल एक और मस्ती भरा गीत आ रहा है तो आप इसे भी इंजॉय कीजिएगा। और जंगीर भाई आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने का, आप माजी चाहते हैं, मैं आपकी कॉल ले नहीं पाया हूं, अगर अभी आप फोन करेंगे तो मैं आपकी ले पाऊंगा। तो बाकी दीगर जितने दोस्त हैं, लियाकत भाई और दीगर दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, हीरा साहब, ये मस्ती भरा गीत है तो आप सभी दोस्तों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त जो है वो बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक और मस्ती भरा गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद मस्ती भरा गीत, उसके बाद मिलते हैं।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं अगले गीत की जानिब। ये भी मस्ती भरा गीत है। बनो जी आपके नाम, जरीना सब आपके नाम, और जनाब इसके साथ साथ साइमा जी आपके नाम करते हैं, और आपके साथ साथ लियाकत भाई, ख्वाजा सरफराज, और इस वक्त बाबर शाप पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी करेंगे, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। ये मस्ती भरा गीत करते हैं दोस्तों, और यकीनन आप सभी इंजॉय करेंगे। मस्ती भरा गीत है, मस्ती भरे गीत। आज छुट्टी का दिन है जनाब, बैंक हॉलीडे है, तो आप जो दोस्त छुट्टियाँ मना रहे हैं, कोई सफ़र कर रहा है, कार में बैठा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बोर ना हो जाएँ, थोड़े गुड मूड में रहें, क्यों छुट्टी का दिन है, तो अच्छा मूड है तो अच्छा रहे। तो चलते हैं, मस्ती भरा गीत सुनते हैं जनाब, सभी सुनने वालों के नाम।

0: अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना आखिर में जा मस्ती सारी ख़त्म और सोज भरे वही बोल सोज भरे तरीके से अदा किए गए जो मस्ती में किए जा रहे थे। तो दोस्तों अब चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:42 यानी कि 12:42। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद सदाबहार एक पुराना गीत सुनेंगे नहीद अख्तर की आवाज़ में। ये प्यारा सा गीत है बानो बहन आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ जरीना सभा आपके नाम करेंगे और तनवीर अख्तर सभा आपके नाम करेंगे और जनाब सोनिया बहन बर्मिगा में सुन रही हैं उनके नाम करेंगे और जनाब अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से आपके नाम करेंगे, वाजिद भाई अडर्सफील्ड से आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ हीरा खान साहब और तारिक जुल्फी साहब, लियाकत भाई, जमान खान और मोहम्मद अकरम साहब और जंगीर भाई और अब जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले जनाब उनके नाम भी पाकिस्तान से लौट आए हैं जनाब, तो उनके नाम भी करेंगे और उसके बाद जनाब इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा जनाब अब्दुल दीवाना साहब आपके नाम भी और ब्रेडफोर्ड 3 से जनाब शाह जी हैं ग्लास्टन स्ट्रीट से आपके नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त हैं इस वक्त। ओ भूल ही गया मैं कि हमारे प्यारे जनाब जफर इकबाल साहब हमारे ब्रेडफोर्ड 3 के ब्रेडफोर्ड मोर के काउंसलर जनाब आपने फ़ोन किया था, शुक्रिया फ़ोन करने का और आपने कहा था कि आप अपने तमाम सुनने वालों के लिए प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं, तो माफ़ चाहता हूँ मैं भूल गया, अभी याद आ गई, अच्छा हुआ। तो ये गीत आपकी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम जफर इकबाल साहब बहुत प्यारे हैं आप, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे और हमेशा खुश रहें आबाद रहें, हमारी दुआ है आपके साथ। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, शाहीन बहना आपके नाम भी करेंगे और प्यारी बहना सादिया जी आजरा जी आपके नाम भी करेंगे।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

था यकीन के आएंगी ये रातें कभी। नई दफ्तर की प्यारी सुरीली आवाज में आपने दोस्तों सुरीला गीत सुना। और रकी बहना, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा। आप अपने बच्चों के लिए वारिसा साहिल यासर के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो उनके नाम करेंगे ये गीत, और आप के साथ साथ इसी गीत को मूना जी आपके नाम करेंगे, और यही गीत जनाब बाबर शाह पे तीनों शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।

0: दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। दोस्तों, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं। उम्मीद रखते हैं आप दोस्तों ने दो हिस्से जो प्रोग्राम के हैं वो पसंद किए होंगे। आप कोशिश होगी इस आवर में भी थोड़े मस्ती भरे गीत हो जाएं, और अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर होगा 01274-306-66। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत मस्ती भरा गीत है। नसरीन साहब, आप फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आसमा के लिए गीत सुनना चाहती हैं, ये मस्ती भरा गीत उम्मीद रखूंगा आपको ज़रूर पसंद आएगा और आसमा को भी, और तमाम सुनने वाले जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, ये मस्ती भरा गीत ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये मस्ती भरा गीत। आप सभी दोस्त जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम करेंगे।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with National Property Lawyers, one trusted team for your property and legal needs. Call 01274-559-565.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, मस्ती बड़ा की सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि 1:13 हुआ चाहते हैं, यानी कि 13:01। तो जनाब चलेंगे कमर्शियल की जाने में, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, थोड़ा तेज़ गीत है लेकिन अच्छा गीत है। भाई रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर से आपने फ़ोन किया, आपने सभी सुनने वालों को सलाम अर्ज़ किया, सनराइज की जितनी टीम है सबको सलाम अर्ज़ किया और सबके लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा। तनवीर अख्तर साहब आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। और नसरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, आसमा जी आपके नाम भी करेंगे, और रॉकी बहना आपकी जानिब से आपके बच्चों वारिसा साहिल और यासर के लिए भी प्ले करेंगे, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम प्ले करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121, ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं जनाब अगले गीत की जानेब। ये भी बहुत ही प्यारा सा गीत है और रीटा बेटिया आप अमेरिका में सुन रही हैं, आपके नाम करते हैं, आपके साथ साथ इसी को तमाम सुनने वालों के नाम, अमरीन सभा आपके नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तीन शहजादे बाबर शाह पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बैठे नहीं है, काम कर रहे हैं और

बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: क्या गाना था, क्या गाना था, यकीनन आप दोस्तों ने सभी ने एंजॉय किया होगा। और अब दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि यहाँ हम रोक लेते हैं जनाब, क्या कहते हैं उसको जनाब, गीतों को, क्योंकि वक्त हमें बता रहा है कि जनाब जहर की अजान का वक्त हो चुका है। तो अजान सुनेंगे, उसके बाद ही दोस्तों आपसे मिलेंगे। और आप सुनते रहिएगा, दो बजे तक मेरा और आपका साथ है। मेरे लिए गीत हैं और आपकी डेडिकेशन है जनाब। अगर कोई अपनी पसंद का गीत सुनना चाहें या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहें तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं, सुनते हैं जनाब जोहर की अज़ान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और ये अजान जैसे कि आपने सुना कि ब्रेडफोर्ड के टाइम टेबल के मुताबिक है। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आपने शहर के वक्त के मुताबिक जो है नमाज अदा कीजिएगा। तो दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि चलेंगे गीतों का सिलसिला जहाँ रोका था वहीं से शुरू करेंगे। तो चलते हैं, ये प्यारा सा गीत जो है आप सभी सुनने वाले जो हैं उन सब के नाम करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप सभी जो थोड़े आज हमने फास्ट फास्ट गीत रखे क्योंकि सोच भरे गीतों की फरमाइश आने लग गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो जो सोच भरे गीत हैं उनको किनारे रहने दिया और मस्ती भरे गीत पेश किए क्योंकि जनाब आज बैंक हॉलीडे है, आप सभी दोस्त छुट्टियां बना रहे हैं। तो जाहिर है आप छुट्टी के दिन जनाब आप सोच भरे गीत सुन के और थोड़ा मूड ख़राब करके बैठ थोड़े ही जाएंगे, अपनी सोचों में गुम हो जाएंगे, कोई दोस्त हो पुरानी यादों में गुम हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आज छुट्टी का दिन है, तो इन्जॉय कीजिएगा, घर के काम काज जो हैं उनमें भी घर वालों का हाथ बटाइएगा और कोई शॉपिंग वगैरह कीजिएगा और जाइएगा आगे पीछे घूमने फिरने, तो ताकि छुट्टी का जो लुत्फ है उसे दोबारा किया जाए। तो चलते हैं जनाब, आप सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत और आप सभी सुनने वालों के नाम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, यूं जिए मरे यार के दुनिया याद करे, याद तो कोई नहीं रखता जनाब। ये सब कहने की बातें हैं फिल्मों में, अफसानों में, ड्रामों में ऐसे होता है, कोई ड्रामा कर रहा हो तो होता है। वैसे तो कौन साथ देता है जनाब, मरना जीना जो है वो तो अलहदा बात है जनाब, दो पल में बदल जाते हैं। अब क्या बताएं जनाब, आप तो छोड़िए, चलते हैं जनाब। अब क्या है कि वक्त जो है हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, और अब कमर्शियल के बाद एक और मस्ती भरा शोख और चंचल गीत आप सभी दोस्तों के नाम करूंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि जनाब वक्त हुआ जाता है 1:44, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 1। और इसके साथ ही चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद एक मस्ती भरा गीत होगा रफ़ी की आवाज़ में, सदाबहार पुराना गीत, चौधरी रुखसार अहमद साहब आपके नाम करेंगे। और उसके बाद जनाब मोहम्मद अकरम साहब आपके नाम करेंगे, जमान ख़ान साहब आपके नाम करेंगे, लियाकत भाई आपके नाम करेंगे, और हीरा ख़ान साहब, और जनाब ख्वाजा सरफराज साहब, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग वाले, और वाजिद भाई हडर्सफील्ड से, और जनाब तारिक जुल्फी साहब, और हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, महबूब इलाही साहब, और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, और दीगर जितने दोस्त इस वक्त सन रेडियो को सुन रहे हैं। इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और उनके साथ साथ जनाब जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और जनाब एक बार फिर हमें फ़ोन किया था जनाब हमारे ब्रेड फॉर मोर के कौंसलर जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, तो वो भी तमाम सुनने वालों के अपने दोस्तों के नाम भी गीत सुनना चाहते हैं। तो ये मस्ती भरा गीत जनाब ज़फ़र इकबाल साहब हमारे ब्रेड फॉर मोर के कौंसलर आप की जानब से सबकी नज़र भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत रवि साहब की प्यारी सुरीली आवाज़ में। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा, मेरा और आपका साथ तकरीबन 14-15 मिनटों का रह गया है, ज़रूर साथ दीजिएगा।
2: 24 hours a day, कुल्लो नफ्सेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: 24 hours a day, 103.2. This is Sunrise Radio.
5: Got the greatest station, radio station in the world.
6: Sunrise Radio.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

क्या बात है जनाब, मजा ही आ गया गीत सुन के। और जनाब अब क्या है कि अगले गीत की जानिब चलते हैं। और ये गीत जो है मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम।

दोस्तों इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 11:25 पे। तो मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। हमारी जन्म से खुदा हाफिज। अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारे साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि यू नो इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: ओके ओके, सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ोकात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 4 दफ़ा 6, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।
1: गुस्सा

का सिलसिला जारी। आप हमें कॉल करें 01274306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर घुंस गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

राइट, आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: कफ्सिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव, लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही

तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रैडफोर्ड 7230303।

तो लीजिए हम आपको दिए देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदड़ी तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास से मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। स्टे ट्यून्ड।

शो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एकतताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एहतताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीज़ो अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: Here's what's happening across the region over the coming days. First in Bradford, Jim Moyer. Neo Fauna continues at Cartwright Hall, with wildlife-inspired artwork running through to August. Also in Bradford, Miss Saigon opens at the Alhambra Theatre from May 5th, bringing the major musical production to the city. Over in Calderdale, the Royal Photographic Society's Analogue 10 continues at Dean Clough in Halifax. Also at Dean Clough, Fur and Feathers continues through May. In Leeds, I, Daniel Blake, is at Leeds Playhouse, running through to 9th of May. In Manchester, Bank of Dave, the musical, is at the Lowry in Salford, running from 2nd to 16th of May. Over in East Lancashire, the Don Banks Afternoon Variety Show takes place at Darwin Library Theatre on 6th of May. And finally, in Milton Keynes, Al Murray, All You Need Is Gov, comes to Milton Keynes Theatre on 10th of May. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।